सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद खे इश्क जो आजार वसण जो करार असल इमामन सी।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: दिफा वारो वजीर माफी वठण लाइ बि तयार न आहे। कश्मीर मसले जे हल लाइ मौलाना फज़ल रहमान खे किरदार अदा करणु ॾिनो वञे। एहतजाज कंदड़नि लाइ सियासी रस्तो इख़्तियार कयो वञे। दिफा वारो वज़ीर ख्वाजा आसिफ कश्मीर बाबति ॾिनल बयान ते क़ाइम रावला कोट बाबति बयान ते माफ़ी वठण खां बि इनकार। क़ौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे दिफा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ चयो त बर्थ सर्टिफिकेट सां केर बि पाकिस्तानी या कश्मीरी नथो थी सघे। बयान ते वज़ाहत ॾेई चुको आहियां। अपोज़िशन माज़ी जूं ग़लतियूं विसारे मिसाख़ जमहूरियत ते सहियूं करे मिसाख़ जमहूरियत में बहितरी जी गुंजाइश आहे त उनखे दुरुस्त कयो वञे। आज़ाद कश्मीर जे अवामी एक्शन कमेटी मूंसां राब्तो कयो आहे। अॼु खेनि मुस्तक़बिल जी हिकमत अमली जो ऐलान करणो हुयो पर नाहे कयो। एक्शन कमेटी जो ख़त हुकूमत ॾांहुं मोकिलियो आहे पर अञा ताईं जवाबु नाहे मिलियो। क़ौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे JUI सरबराह मौलाना फज़ल रहमान चयो आहे त माण्हू वॾे अंग में रावला कोट में मौजूदु आहिनि। हुननि मुज़फ़राबाद तरफ़ मार्च बि मुलतवी कयो आहे। ॻाल्हियूं थियणु घुरिजनि, सदर मुतालबनि खे ॾिसणु घुरिजे, तकरीर जे बुनियाद ते तशदुद न थियणु घुरिजे। ख्वाजा आसिफ़ जहिड़ा बयान कावड़ वधाईंदा आहिनि। दिफ़ा वारे वज़ीर तौरु ख्वाजा आसिफ़ खे अहिड़ा बयान न ॾियणु घुरिजनि। वज़ीर आज़म वेड लाइ ख्वाजा आसिफ़ ऐं ठाह लाइ इसाक डार खे रखियो आहे। पार्लियामेंट में जज़्बाती ॻाल्हियूं थियूं आहिनि, हीउ वक़्तु बर्दाश्त करण जो आहे। जज़्बाती रद अमल हुकूमत खे नथो सुहाए। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज जो मक़सदु चूंडूं रोकराइण आहे। छा धुरण ऐं जथनि ज़रिए इलेक्शन रोकराए सघिजे थी? क़ौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त मुज़ाहिरीन अरावला कोट में धरणो हणी वेठल आहिनि, ॿियो किथे बि एहतजाज न आहे। पाबंदी बणियल एक्शन कमेटी मुहाजरनि जूं 12 सीटनि जी बुनियाद बढ़ाए मुज़फ़राबाद ते लश्कर कुशी करणु चाहे थी। यूरोप ईरान जंग में अमरीका जो साथ न ॾिनो। नेटो खां मायूस आहियां। बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन ऐं इटली सहकार न कयो। असांखे मदद जी ज़रूरत न हुई पर यूरोपी मुल्कनि सहकार कनि हा त सुठो लॻी आहे। अमरीका ईरान खां वॾे फ़र्क़ सां जंग खटी आहे। ईरान हर उहा ॻाल्हि मञी रहियो आहे जेका अमरीका चाहे थो। ईरान आमदनी हुर्मुस मां टूल टैक्स या इंश्योरेंस जी रक़म वसूल न कंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जूं नेटो चीफ मार्क रोटी सां गॾु मीडिया सां ॻाल्हियूं। सदर ट्रंप ईरान खे फंड्स जारी करण जी तरदीद कंदे चयो आहे त ईरान खे मंझंदि फंड जारी न आहिनि कया। असांखे ईरान जे पैसा ॾियण जी ज़रूरत न आहे। ईरान खे अमरीकी आवाज़दारनि खां ख़ुराक ख़रीद करणी पवंदी ऐं उहे पैसा मंझंदि ईरानी फंड्स मां काटिया वेंदा। ईरान अमरीका जे रोज़ तब्दील थींदड़ बयाननि ते ख़दशा ज़ाहिर करे छॾिया। ईरानी परदेह खाते जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त MOU बाबति अमरीका जा तकरारी बयान साम्हूं अची रहिया आहिनि। अहिड़ा बयान ईरानी आवाम जे अदम एतमाद खे घटि करण में मददगार साबित न थींदा। अमरीका खे MOU जे वाज़े मतन जी उबतड़ तशरीहनि खां पासो करणु घुरिजे। अमरीका खे पंहिंजे ज़िमेवारनि ऐं वादनि खे पूरो करणु घुरिजे। ईरान अमरीका जंग मंदी माहिदे बाद आलमी मार्केट में तेल जी क़ीमतनि में वॾे पैमाने ते लात। 8.5 महीननि खां पोइ पहिरियों भेरो ब्रेंट क्रूड ऑयल जी क़ीमत $74.80 थी वई। आलमी मैगज़ीन ब्लूमबर्ग जी रिपोर्ट मूजिबि हीउ पहिरियों मौक़ो आहे जो तेल जूं क़ीमतूं ईरान अमरीका जंग खां अॻु वारी सतह ते पहुतियूं आहिनि। कतरी अमीर जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खे फ़ोन। शेख तमीम बिन हमदुल्सानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खे पाकिस्तान जी कामयाब सिफारती कोशिशनि ते वाधायूं ॾिनियूं। कतर जे अमीर पाकिस्तान जे अमन कोशिशनि ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी क़यादत जी वाखाण बि कई। कतरी अमीर पारां अमन कोशिशनि जी मुकमल हिमायत जो इज़हारु।

كشف الدجى بجمال.

0: اس ٹھاٹ سے مستوں کے گزارے نہیں ہوتے.
1: بڑا بڑا حاصل کلام سے.

मुतल चय नज़रन मां बिन जन की सुणप कन कोट वासी इमरान शेख ए नवीद शेख तौर कई वही। रोड़ी में रात देर से कदीमी नवंडारन वो मातमी ताजियो शमा गुल की रसम बाद शाह इराक इमाम बारगाह मां बरामद थो। शमा गुल की रसम दौरान सजे शहर जो लाइटू बंद कई व्यू। फिजा या हुसैन के सदाउन से गूंजंदी रही। मुल्क के कुंड कुर्च का लखे आजादार रोड़ी पहुंची मातमी ताजिए के कुलोरी रहा है। तारीखी मातमी जुलूस करबला मैदान कसरी नासर रोड आए लाला शहजादा चौक का थींदो पंहिंजी मंजिल दां रवानो थियो। सिंध समेत समूरे मुल्क में नाई मोहरम हराम जा मातमी जुलूस अज बरामद थींदा। सिक्योरिटी जा इंतजाम इंतहाई सख्त कया व्या। कराची में नाई मोहरम हराम जो मरकजी मातमी जुलूस नशतर पाक का बरामद थी। इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया वट नहर थींदो। अलामा शहनशाह नकवी नशतर पाक में मरकजी मातमी इजतमा के खिताब कंदो। मुखिया जुलूस की अगवाणी पाक खैदरी स्काउट्स कंदा। मरकजी जुलूस पंज रवाजी रस्म शाहनवाज भुट्टो रोड एम ए जनार रोड ए मरकजी नुमाइश चौरंगी का थींदो मंजिल तरफ वधंदो। एम ए जनार रोड ते इमाम बारगाह अली रज़ा आडो नमाज ज़हरीन अदा कई वेंदी। जंहिं बाद जुलूस कारदार में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया वट नहर थी वेंदो। जुलूस जी सिक्योरिटी लाइ रेंजर्स ए पुलिस जा 5,000 खां वधीक अहलकार मुक़रर। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में कयामत के जल्जले जलोड़न तबाही मचाए छी। जल्जले सबब केतरी इमारतू किरी पयूं। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में आयल 7.2 / 7.5 लोडन वड़ी तबाही मचाए छी। जल्जले सबब केतरी इमारतू किरी पयूं। शहरी जान बचाने लाए खौफ वेचा रड़ियूं कंदे घरन का बाहर निकली आया। खबर एजेंसी मूजिब जल्जले की शिदत तमाम घनी हुई। लोडा पाड़ेसरी मुल्क कोलंबिया की राजधानी बगोडा तई महसूस कया पाया। जल्जले सबब कराकस के हवाई अड्डे में तबाही। एयरपोर्ट के उड़ाम लाइ बंद किया वो। रेस्क्यू जरूर चवण है तो जल्जले सबब 10,000 मानून के फोत थियण जो 40% इम्कान है। मलबे हेठा 1,000 मानू फाथल। इमदादी कार्रवाई जो सिलसिलो जारी।

0: यूरोपीय रण जंग में अमेरिका जो साथ न ॾिनो नेटो खां मायूस आहियां। बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली सहकार न कयो, असांखे मदद जी ज़रूरत न हुई, पर यूरोपीय मुल्कनि सहकार कना त सुठो लॻे हा। अमेरिका ईरान खां वॾे फ़र्क़ सां जंग खटी आहे। ईरान हर इहा ॻाल्हि मञी रहियो आहे जेका अमेरिका चाहे थो। ईरान आमन हुरमज मां टूल टैक्स या इंश्योरेंस जी रक़म वसूल न कंदो। अमरीकी सदर ट्रंप जो नेटो चीफ मार्क रोटी सां गॾु मीडिया सां ॻाल्हियूं। सदर ट्रंप ईरान खे फंड्स जारी करण जी तरदीद कंदे चयो आहे त ईरान खे मंझंद फंड जारी न आहिनि कया, असांखे ईरान खे पैसा ॾियण जी ज़रूरत न आहे। ईरान खे अमरीकी आबादगारनि खां खुराक ख़रीद करणी पवंदी ऐं उहे पैसा मंझंद ईरानी फंड्स मां काटिया वेंदा। ईरान अमरीका जी रोज़ तब्दील थींदड़ बयाननि ते ख़दशा ज़ाहिर करे छॾिया। ईरानी परॾेही खाते जे तर्जुमान इस्माइल बाग़ाई चयो आहे त MOU बाबति अमरीका जा तकरारी बयान साम्हूं अची रहिया आहिनि। अहिड़ा बयान ईरानी अवाम जे अदम इतमाद ते घटि करण में मददगार साबित न थींदा। अमरीका खे MOU जे वाज़े मतन जे उबतर तशरीहनि खां पासो करणु घुर्जे। अमरीका खे पंहिंजे ज़िमेवारनि ऐं वाइदनि खे पूरो करणु घुर्जे।
1: किसी भी बैंक अकाउंट से पेमेंट करें फ्री फौरी यकीनी अपने बैंक की ऐप में जाओ।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफ़ा एक अहम और शानदार करियर मौको पेश कर वने थो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवारन का दरख्वास्तों तलब कई वन थियो। GAFM एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में आए जो मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतू रखे और इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पैंजी CV फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौको आहे। देर न करियो, अभी अप्लाई करियो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।
4: शक्ति शहादत जी मिड़ोई मलान के जरो नाहे यजीद के ये इश्क जो आजा। حسن جو قرار اصل امام منسی

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मनान खे जरो नाहे यजीद के इश्क जो आजा वसण जो करार असल इमामन सी।

تیری نظریں دشمنوں پہ ہر گھڑی بیدار ہیں، اور صفا تیری ہمیشہ جگ

رب کا رہنما تیرے دم سے

अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

वेनेजुएला में ज़लज़ले तबाही मचाए छी समय इमारतूं पट ॿटीह ॼणा फौत हज़ार खां वधीक ज़ख़्मी किरियल इमारतुनि जे मलबे खे हटाइण वारो ऑपरेशन जारी क्राकस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बि बंदि कयो वियो क्राकस में हिकु ॿिए पुठियां आयल ज़लज़ले जे ॿिनि झटकनि वॾनि इमारतुनि खे मिटी जे ढेर में तब्दील करे छॾियो ज़लज़ले जी शिदत 7.2 ऐं 7.5 जी रिकॉर्ड कई वई परॾेही मीडिया मूजिबि ज़लज़ले जा लोड़ा कोलंबिया जी राजधानी बोगोटा ताईं महसूसु कया विया यूरोप ईरान जंग में अमरीका जो साथ न ॾिनो नेटो खां मायूस आहियां बरतानिया जर्मनी फ्रांस स्पेन इटली सहकार न कयो

0: असांखे मदद जी ज़रूरत न हुई पर यूरोपीय मुल्कनि सहकार कनि हा त सुठो लॻे हा। अमरीका ईरान खां वरी फ़र्क़ सां जंग खटी आहे। ईरान अबन हुरमज मां टूल टैक्स ऐं चोरनि जी रक़म वसूल न कंदो। अमरीकी सदर ट्रंप जो नेटो चीफ मार्क रोटी सां गॾु मीडिया सां ॻाल्हियूं। सदर ट्रंप ईरान खे फंड जारी करण जी तरदीद कंदे चयो आहे त ईरान खे मंजमन फंड जारी नाहिनि कया, असांखे ईरान खे पैसा ॾियण जी ज़रूरत नाहे। ईरान खे अमरीकी आबादकरण खां खुराक खणणी पवंदी। पैसा मंजमन ईरानी फंड्स मां काटिया वेंदा। ईरान अमरीका जी रोज़ तब्दील थियल बयाननि ते ख़दशा ज़ाहिर करे छॾिया। ईरानी परॾेही खाते जे तर्जुमान इस्माइल बाग़ाई चयो आहे त MOU बाबति अमरीका जा तकरारी बयान साम्हूं अची रहिया आहिनि। अहिड़ा बयान ईरानी आवाम जे अतमाद खे घटि कंदा। अमरीका खे MOU जी वाज़े मतनि जी उबर तशरीहनि खां पासो करणु घुरिजे। रोड़ी में तारीख़ी शमागुल मातम बाद $9 वारे ताज़िए खे कुलो ॾियण दौरान साबू साजण सौ चार अज़ादार फ़ौत, केतिरा ई बेहोश फ़ौत थियल चयनि अज़ादारनि मां ॿिनि ॼणनि जी सुञाणप कनपुर वासी इमरान शेख ऐं नवीद शेख तौर कई वई। रोड़ीअ में राति देरि सां क़दीमी $9 वारो मातमी ताज़ियो शमागुल जी रस्म बाद शाह इराक इमाम बारगाह मां बरामद थियो। मंदिर तरफ़ रवनि दवा ॿिनि शहरनि में बि नाई मुहरम जा मातमी जुलूस बरामद। सिक्योरिटी जा इंतिज़ाम इंताही सख़्त। ऐं कराचीअ जे इलाइक़े सरदाणी टाउन में ज़ाल ऐं मुड़ुस विच में तलाक वारे मामले तां चिकताण जवाबदार 5-10 वरनि जे मासूम पुट खे तशद्दुद करे मारे छॾियो। पुलिस मूजिब ज़ाल मुड़ुस विच में खुलाबाद चिकताण हलंदड़ हुई। गुज़िरियल ॾींहुं शाम जो बारे हैदर खे संस मामू वालिद अज़र जे घर छॾे वियो हो, जिते जवाबदार अज़र संस माउ सुल्तान बारे हैदर खे तशद्दुद जो निशानो बणाए क़तल कयो। पुलिस ॿिन्ही जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे मामले जी जांच शुरू करे छॾी।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
2: सन क्रॉप ग्रुप का। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम ए शानदार कैरियर मौको पेश कयो वने थो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार ए जिम्मेवार उम्मीदवारन का दरख्वास्त तलब कई वन थी। GAFM एक अड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में है जो मीडिया मैनेजमेंट, टीम लीडरशिप ए ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतू रखे इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौको है। देर न करो, अभी अप्लाई करो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।
4: सख्ती शहादत जी मिड़ोई मला जरो नाहे यजीद के ये इश्क जो आजा उसण जो करार असल इमामन सी।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान के जरो नाहे यजीद के इश्क जो आजा हुसन जो करार असल इमामन सी।

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के इश्क जो आजा हुसन जो करार असल इमामन सी।

0: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम आई शानदार करियर मौकियो पेश कर वने थो GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार आई जिम्मेवार उम्मीदवारन का दरख्वास्तो तलब कई वने थियो GAFM एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द जी गोला में आहे जेको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप आई ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतू रखे आई इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन व्हाट्सएप नंबर 03111770451 ही एक बेहतरीन करियर मौको आहे देर न करियो अभी अप्लाई करियो GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज
1: शक्ति शहादत जी मिड़ोई मलान के जरो नाहे यजीद के ये इश्क जो आजा उसण जो करार असल इमामन सी।

الحمد لرب هو شافٍ.

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के ये इश्क जो आजा उसण जो करार असल इमामन।

खुद तुझको शब्बीर ने कुरान पढ़ाया है बचपन में खुद।

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के इश्क जो आजा वसण जो करार असल इमामन सी।

شاہباز قلندر قلندر.

شیریستان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا سلفقار

करबला के शहीदन के भेटा पेश कर लाए सिंध में अदादारी जारी। रोड़ी में बरामद थल नव डरन वो ताजियो शमा गुल मंडी खबर पहुंतल अदादार कुछ देर आराम बाद आखिरी मंजिल तरफ सफर शुरू कंदा। वफाकी गर वजीर मोहसिन नकवी रोड़ी पहुंची जलूस की सिक्योरिटी जायजो वरतो। कराची ठठो सजावल बदीन टनो मोहम्मद खान हैदराबाद मठियारी टनो अलैयार मीरपुर खास सिरपारकर उमरकोट सांगड़ नवाबशाह नसरफो जामशरो दादू खैरपुर सखर घोटकी जगमबाद कशमोर शिकारपुर लाड़काणो कंबर जिले के नंढन वन शहरों में अदादारी जारी। हर तरफ या हुसैन जो सदाऊँ बुलंद सिक्योरिटी सख्त पुलिस सां गड रेंजर्स भी मुकर थियल।

जयपुर भरसा 12 साल निगर नांग जे कखन सबब फोर्थ वोट बालाकान डोई में नांग मसूद अली पुट गुलाम अली बिरोई के ककियो निगर के गांधी जोगी हालत में अस्पताल पहुंचाया जिते उन दम दिनों निगर जो मर जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौके पेश कर वने थो। जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवार का दरख्वास्तों तलब कई वन थी। जीए एफएम एक अड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में है जो मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलें। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौके है, देर न करियो, अभी अप्लाई करियो। जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के इश्क जो आजार वसण जो करार असल इमामन सी।

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद खे ये इश्क जो आजा हुसन जो करार असल इमामन सी।

तेरी कायनात की धूल है मेरी जिंदगी।

میری پرد جرم طویل ہے میرا زاد راہ قلیل ہے میری

كريم خالق كبرياء نہیں میرا کوئی تیرے سوا اے کریم خالق کبریا

शरी अमरीकी जोलॉजिकल सर्वे मूजिब इंदिला में ज़लज़ले सबबु 10,000 खां 1,00,000 ताईं मौत थी सघनि था। सदर आसिफ सरदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां इंदिला में ज़लज़ले सबबु जानी ऐं माली नुक़सान ते अफ़सोस जो इज़हार कयो। सदर आसिफ सरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान मुश्किल वक़्त में इंदिला जी आवाम सां हमदर्दी जो इज़हार करे थो। मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान मुतासिरनि सां गॾु आहे। पाकिस्तान दुनिया में अमुन ॾींदड़ मुल्क बणिजी वियो आहे। इस्लामाबाद ईरान अमरीका जंग में टाकरे जो किरदार अदा करे खिते में अमुन खे यकीनी बणायो। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान ज़िमेवार एटमी मुल्क आहे। अमरीका ईरान जंग में अला पाकिस्तान खां कम वरितो। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल जंग जे ख़ात्मे लाइ ॾींहं राति कमु कयो आहे। हाणे मामला दुरुस्त रुख में वञी रहिया आहिनि। मुल्क में बि मुआशी इस्तक़ाम तरफ़ वधी रहियो आहे। वेचोभर ॾांहुं अमन ॾांहुं वधी रहियो आहे। ईरान कॾहिं बि एटमी हथियार हासिलु न करे सघंदो। अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त अमरीकी फ़ौज ताक़त सबबु बहिरी ऐं फिज़ाई सहूलतुनि खां महरूम थी वियो आहे। तेहरान सां गुज़िरियल हफ़्ते तारीख़ी मुआहिदो कयो आहे जेको कंहिं बि अमरीकी सदर न कयो हो। आमना हुरमज मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न हूंदो। आमना हुरमज मां गुज़र ईरानी बहरिया जे तय कयल रस्तनि ताईं थी सघे थो। ईरान जे पासदान इनकलाब चयो आहे त आमना हुरमज मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न कयो वेंदो। अहिड़ो को बि क़दम ख़तरनाक साबित थी सघे थो। ईरानी परॾे तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई चयो त अमरीका तय थियल मफ़ामत ते अमल करे। कर्बला जे शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ सिंध में अदादारी जारी। रोहड़ीअ मां बरामद थियल नोडलनि वारो ताज़ियो शमा गुल मंडी कबर खां मंज़िल तरफ़ रवानो आहे। वफ़ाक़ी गुरु वज़ीर मोहसिन नक़वी रोहड़ी पहुची जलूस जी सिक्योरिटी जो जाइज़ो वरितो। कराची ठटो सजावल बदीन टन मोहम्मद ख़ान हैदराबाद मठियाई टनोलयार मीरपुर ख़ास थरपारकर उमरकोट सांकर नवाबशाह नौशलफोज जामशरो दादू खैरपुर सखर घोटकी जकमबाद कश्मोर शिकारपुर लाड़काणो ऐं कंबर ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में

आज़ादारी जारी, हर तरफ़ या हुसैन जूं सदाऊं, सिक्योरिटी सख़्त, पुलिस संगर, रेंजर्स पर मुक़रर थियल। रोड़ीअ में तारीख़ी शमगुल मातम दौरान साहबु साजन सबबि चार आज़ादार फौत थियल, चइनि ॼणनि मां टिनि ॼणनि जी सुञाणप थी वई। कनपुर वासी इमरान शेख, नवीद शेख ऐं खैरपुर वासी नेमतुल्ला उर्फ़ काली सुमर जे नालनि सां कई वई। हिकु ॼणे जी सुञाणप न थी आज़ादार फौत थिया आहिनि।

0: मदे जी भरसां दखण थाणे जे एडिशनल SHO जो तशदो थियल लाश ते गोठ तराई वासी उबैदुल्ला मीरानी जो लाश अस्पताल मुंतकिल ड्यूटी डॉक्टर चवण आहे त एलकार जिस्म जे तशद जा निशान आहिनि ज़हर सबबु संदसि मौत थियो आहे दखण पुलिस चयो आहे त वाक़िए जी हर रुख खां जांच करियूं पिया बस्ती वेझो कब्रिस्तान में वॾनि जे कब्रनि ते दुआ घुरण लाइ आयल नारे जा बिरादरी जे बिंदड़नि में झेड़ो लथियूं लॻण सां पीरचंद अलीदाद नारे जो क़तल इमदाद नारे जो ज़ख़्मी शेख तैयब कब्रिस्तान अंदरि वॾनि जे कब्र ते आयल नारे जा बिरादरी जे बिंदड़नि में झेड़ो थियो घोट पीर मोहम्मद नारे जो वासी पीरसन जो लाश अस्पताल मुंतकिल चकवे जो जतोई बिरादरी जे बिंदड़नि में पुराणे तकरार सां झेड़ो हिकु ॼणो क़तल घोट मज़ार कुर्सी में करीमण ऐं गुलाम नबी जतोई जे बिंदड़नि में झेड़ो थियो फायरिंग जे नतीजे में गोली लॻण सां बशीर जतोई मारिजी वियो में फायरिंग जो सिलसिलो जारी बलूचिस्तान जे डेरा मुराद जमारी में क़तल थियल टिन ॼणनि जे वारसनि जो जेकमबाद में एहतजाज क़ौमी शाहरा ते लाश रखी धरणो गुज़िरियल ॾींहुं जवाबदार सरावर शाहजवाणी पंहिंजे ज़ाल कुंज सस मदिया ऐं सहुरे यासीन वगन खे क़तल कयो हो खैरपुर भरिसां ॿारनि वरनि जो नींगर नांग जे कखण सबबु फौत कोट बाला खान बिरोई में नांग मसूद अली पुट ग़ुलाम अली बिरोई खे कखियो नींगर खे गंभीर जोगी हालति में अस्पताल पहुचायो वियो जिते हुन दम ॾिनो नींगर जुमड़ ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले सामारे में नए कोर्ट में अगवा थियल वापारी हरेश कुमार मेशवारी की बाजियाबी लाए एहतजाज मेशवारी प्रादी तरफा एहतजाज रैली कड़ी स्टेशन चौक से धरणो हयो रैली में शहर के सियासी समाजी अगवान वापारी शख्सियत वरियंग में शिरकत कई अगवान चो तो हरेश कुमार के नो कोर्ट में अगवा कर वो वापारी बादरी में बेचैनी पकड़ियल है मुगवी हरेश कुमार के फौरी तौर से बाजियाब कर बेचैनी खत्म कई वे
1: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौके पेश कर वने थो GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवार का दरख्वास्तों तलब कई वन थी GAFM एक अड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में है जो मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पैंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन व्हाट्सएप नंबर 03111770451 ही एक बेहतरीन करियर मौके है देर न करियो अभी अप्लाई करियो GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज
4: सख्ती शहादत जी निसोरोई नाज सख्ती शहादत जी निसोरोई नाज रिंद परूरी नराज कजिए करबला

संगो शजर और जान।

0: सख्ती शहादत जी मिड़ोई मनान खे जरो नाहे यजीद के ये इश्क जो आजार वसण जो करार असल इमाम मनसी
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ मिनीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौकियो पेश कर वने थो GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवारन का दरख्वास्त तलब कई वने थियो GAFM एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द जी गोल्हा में आहे जेको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतूं रखे इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन व्हाट्सएप नंबर 03111770451 ही एक बेहतरीन करियर मौको है देर न करियो अभी अप्लाई करियो GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज़

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद खे ये इश्क जो आजा हुसन जो करार असल इमामन सी।

0: जान्यां मोला मुखे मेरी
1: अज शेर हली
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: ओठी तरस तड़ियाई वगुनी गरजो ओठी तरस तड़ियाई वगुनी गरजो पांचे नढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस तड़ियाई ओठी तरस तड़ियाई वगुनी गरजो पांचे नढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस तड़ियाई तुझे उठड़े अदान करे खैर धनी ये दुआ थी घुरा पाजा हड़ा धनी तुझे उठड़े अदान करे खैर धनी ये दुआ थी घुरा पाजा हड़ा धनी शलतो के बिडे रब उम्र घनी जोरो जल जल पहुंचाए जाए दिल पर जो ओठी तरस सजाए वगोनी कर जो ओठी तरस सजाए वगोनी कर जो पांच नंढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस सजाए वन पहुंचंदे जाते वणणो थई मुझी कयल सदा के मनणो थई वन पहुंचंदे जा

नदग जो ओठी तरस सजाए भगोनी गरजो ओठी तरस सजाए भगोनी गरजो पांज नढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस सजाए चयो ओठी अप्र अहवाल तडस बाबा बाबा करे करी कान थी बस चयो ओठी अप्र

बनिया बेबस गोड़ा हारे करी किसो हर हर जो ओठी तरस सजाए भगोनी गर जो पांजे नंढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस सजाए चयो साईं सुगरा नामो अथम अबो बाबा हुसैन मामो अथम चयो साईं

नवर जो ओठी तरस सजाए भगोनी घर जो ओठी तरस सजाए भगोनी घर जो पांजे नंढड़े अते अली असगर जो ओठी तरस सजाए लफ्ज़ बचड़िया जान जद बुधण लगो ओठी बे अख प्यार थी रोण लगो लफ्ज़ बचड़िया।

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के यो इश्क जो आजार वसण जो करार असल इमामन सी।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ॿटीह ॼणनि जे फौतियुनि जी तस्दीक, हज़ारे मलबे हेठां दॿियल फौतियुनि जो अंग 10,000 ताईं पहुचण जो ख़दशो। किरियल इमारतनि जे मलबे घटाइण वारो ऑपरेशन जारी। काकस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बि बंदि कयो वियो। विंसला में हिक ॿिए पुठियां आयल ज़लज़ले जे ॿिनि झटकनि वॾनि इमारतनि खे मिटी जे ढेर में तब्दील करे छॾियो। ज़लज़ले जी शिदत 7.2 ऐं 7.5 रिकॉर्ड कई वई। विंसला जे वक़्ती सदर मुल्क

0: में इमरजेंसी लागू करे छॾी। अमरीकी जूलॉजिकल सर्वे मौज़ पेंसिला में ज़लज़ले सबबु 10,000 खां 1,00,000 ताईं मौत थी सघनि था। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां वेंदला में ज़लज़ले सबबु जानी ऐं माली नुक़सान ते अफ़सोस जो इज़हार। सदर आसिफ ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त पाकिस्तान मुश्किल वक़्त में वेंदला जे आवाम सां हमदर्दी जो इज़हार करे थो। मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान मुतासिरनि सां गॾु आहे। पाकिस्तान की अकेलो करण की कोशिश कर पान अकेला
1: पाकिस्तान का पहला ऐप कंट्रोल्ड BLDC।
0: कंबर तो वजीर आजम ए फील्ड मार्शल जंग के खात्मे लाए डी रात कम कयो। हाने मामला दुरुस्त रुख में वही रहा है। मुल्क में मुआशी इस्तकाम तरफ वधी रहा है। वेझो बि अमुन ॾांहुं वधी रहियो आहे। ईरान कॾहिं बि एटमी हथियार हासिल न करे सघंदो। अमरीकी सदर ट्रंप चयो त अमरीकी फ़ौजी ताक़त सबबु बहिरी ऐं फिज़ाई सहूलतनि खां महरूम थी वियो आहे। तेहरान सां गुज़िरियल हफ़्ते तारीख़ी मुआदो कयो आहे जेको कंहिं बि अमरीकी सदर न कयो हो। गुज़रण लाइ नओं रस्तो न हूंदो आप थी सघे थो। ईरान जे पास दरान इनकलाब चयो त आपने हुरमज मां गुज़रण लाइ रस्तो क़बूल न कयो वेंदो। अहिड़ो को बि क़दम ख़तरनाक साबित थी सघे थो। ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई चयो त अमरीका तय थियल मफ़ामत ते अमल करे। करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ सिंध में अज़ादारी जारी। रोड़ीअ मां बरामद थियल नओं डरनि वारो ताज़ियो शमा गुल मंडी ख़बर खां मंज़िल तरफ़ रवानदा मां। वफ़ाक़ी गुरु वज़ीर मोहसिन नक़वी रोड़ी पहुची जलूस जी सिक्योरिटी जो जाइज़ो वरितो। कराची ठठो सिजावल बदीन टंडो मोमिन ख़ान हैदराबाद मटियाई टंडो अलयार मीरपुर ख़ास दरबारकर उमरकोट सागर नवाबशाह नुसरफो जामचरो दादू खैरपुर सक्कर घोटकी जेकमबाद कश्मोर शिकारपुर लाड़काणो ऐं कंबर ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में अज़ादारी जारी। हर तरफ़ या हुसैन जूं सदाऊं बुलंद। सिक्योरिटी सख़्त पुलिस सां गॾु रेंजर्स बि मुक़रर थियल। रोड़ीअ में तारीख़ी शमा गुल मातम दौरान साबु साजण सबबु 4 अज़ादार फोत। फोत थियल 4 ॼणनि मां 3 ॼणनि जी सुञाणप थी वई। कनकोट वासी इमरान शेख नवीद शेख ऐं खैरपुर वासी नेमतुल्ला उर्फ़ काली सुमरो जे नालनि सां कई वई। 1 ॼणे जी सुञाणप न थी। इंतिज़ामिया मूजिबि पीउ ऐं गर्मी सबबु अज़ादार फोत थिया आहिनि। निकाहबाद रुख़सती न थियण ते बि औरत हक़मर जो हक़दार आहे। लाहौर हाईकोर्ट हक़मर बाबति दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो जारी करे छॾियो। अदालत फ़ैसिले में ॼाणायो आहे त निकाह थियण बाद रुख़सती न थियण ते बि औरत हक़मर जी हक़दार आहे। निकाहनामे में हक़मर जा तफ़सील न हूंदो त मुतालबे ते अदा कयो वेंदो। खुला औरत जो मुस्तक़बिल शरई ऐं क़ानूनी हक़ आहे। खुला लाइ मुड़ुस जी रज़ामंदी ज़रूरी नाहे। खुला बाद इदत मुकमल थियण ते औरत ॿियो निकाह बि करे सघे थी। मदद जी भरिसां ॾखण थाणे जुडिशियल SHO जो तशद थियल लाश हथु। ॻोठ तराई वासी उबैदुल्ला मीरानी जो लाश अस्पताल मुंतकिल ड्यूटी डॉक्टर जो चवण आहे त अहलकार जिस्म ते तशद जा निशान आहिनि। ज़हर सबबु संदसि मौत थियो आहे। ॾखण पुलिस चयो आहे त वाकिए जी हर रुख खां जांच जारी आहे। टंडो मस्ती वेझो कब्रिस्तान में वॾनि जे क़बरनि ते दुआ घुरण लाइ आयल नारे जा बिरादरी बिंदुनि में झेड़ो। लठियूं लॻण सां पीरसन अली दाद नारे जो क़तल इमदाद नारे जो ज़ख़्मी शेख तैयब कब्रिस्तान अंदरि वॾनि जे क़बरनि ते आयल नारे जा बिरादरी बिंदुनि में झेड़ो थियो। घोट पीर मोहम्मद नारे जो वासी पीरसन जो लाश इस्पताल मुंतकिल। चकवे जो जतोई बिरादरी बिंदुनि में पुराणी तकरार सां झेड़ो। हिकु ॼणो क़तल घोट मज़ार कुर्सीअ में करीमण ऐं ग़ुलाम नबी जतोई जे धुरनि में झेड़ो थियो। फायरिंग जी लेवर दौरान गोली लॻण सां बशीर जतोई मारिजी वियो। धुरनि में फायरिंग जो सिलसिलो जारी। बलोचिस्तान जे डेरा मुराद जमारी में क़तल थियल 3 ॼणनि जे वारसनि जो जेकम बाद में एहतजाज। क़ौमी शाह ते लाश रखी धरणो। गुज़िरियल ॾींहुं जवाबदार इसाह जवाणी पंहिंजे ज़ाल कूंज सस मधिया ऐं सहुरे यासीन वगन खे क़तल कयो हो। वारसनि जनाज़े में मदद करण बाद टिनी मुल्कनि जा लाश क़ौमी शाह ते रखी धरणो हुयो। मुजाहिरनि जो जवाबदार पंहिंजे साथियुनि जी मदद सां ज़ाल सस ऐं सहुरे खे बेगुनाह क़तल करे ज़ुल्म कयो आहे। जवाबदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ ॾियारियो वञे। खैर पर बरसा बारन बरन जो नींगर नांग के कखन सबोत गोट बाला खान बिरोही में नांग मसूद अली पुत्र गुलाम अली बिरोही के कखियो नींगर की गणती जोगी हालत में अस्पताल पहुंचाया वो जिते उन दम दिनों नींगर जो मड़े जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले सामारे में नए कोर्ट में अगवा थियल व्यापारी हरेश कुमार मेछवार की बाजियाबी लाइ एहतजाज मेछवार अपराधी तरफा एहतजाज रैली स्टेशन चौक के धरणो हयो वो रैली में शहर के समाजी सियासी और व्यापारी शख्सियतन वजन में शिरकत कई व्यापारी हरेश कुमार के नए कोर्ट में अगवा किया वो व्यापारी अपराधी बेचैनी पकड़ियल है मुगवी हरेश कुमार के फौरी तौर से बाजियाब कराए बेचैनी खत्म कई वे आइटंडो मोहम्मद खान में बिजली जो हाई वोल्टेज तारू किरण सब टे मेहू करंट लगन सब मरी व्यू टे जख्मी फैजान कुरैशी जो टे भरोड़ में हूँ करंट लगन सब मरी व्यू मुतासर जो हेस्को खिलाफ़ एहतजाज जिम्मेवार खिलाफ़ कार्रवाई करण और मुआवजो देने जो मुतालबो
2: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में ते जबरदस्त हवा रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का।
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह।

लीडरशिप आई ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे आई इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पंहिंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकिलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौको है, देर न करो, अभी अप्लाई करो। GAFM 90.8 सकरंट नवाब शाह जो आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: शक्ति शहादत जी निसोरोई नाज शक्ति शहादत जी निसोरोई नाज रिंद परूरी नराज

0: सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद के ये इश्क जो आजार हुसन जो करार असल इमामन सी
1: जै वक्त भी पहें जे बत

इंजला में ज़लज़ले तबाही मचाए छॾी। सवे इमारतूं पर फौतन जो अंग वधीक 167 थी वियो। हज़ारे मलबे हेठां दॿियल फौतन जो अंग 10,000 ताईं पहुचण जो ख़दशो। किरियल इमारतनि जे मलबे घटाइण वारो ऑपरेशन जारी। क्राकस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंदि कयो वियो। इंजला में ॿिए पुठियां आयल ज़लज़ले जे ॿिनि झटकनि वारनि इमारतुनि खे मिटी जे ढेर में तब्दील करे छॾियो। ज़लज़ले जी शिदत 7.2 ऐं 7.5 रिकॉर्ड कई वई। विंदुरु जे वक़्ती सदर मुल्क में एमरजेंसी लागू करे छॾी। अमरीकी जूलॉजिकल सर्वे मूजिबि विंदुरु में ज़लज़ले सां 10,000 खां 1,00,000 ताईं मौत थी सघनि। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां विंदुरु में ज़लज़ले सबबु जानी ऐं माली नुक़सान ते अफ़सोस जो इज़हार। सदर आसिफ़ ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाकिस्तान मुश्किल वक़्त में विंदुरु जी आवाम सां हमदर्दी जो इज़हार करे थो। मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान मुतासिरनि सां गॾु आहे। पाकिस्तान खे अकेलो करण जी कोशिशि कंदड़ पाण अकेला थी विया आहिनि। पाकिस्तान दुनिया में अमन ॾींदड़ मुल्क बणिजी पियो आहे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वज़ीर आज़म इसाक डार चयो आहे पाकिस्तान ज़िमेवार एटमी मुल्क आहे। अमरीका ईरान जंग में अलाह पाक पाकिस्तान खां कम वरितो। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जंग जे ख़ात्मे लाइ ॾींहुं राति कमु कयो। हाणे मामला दुरुस्त रुख में वञी रहिया आहिनि। मुल्क में मुआशी इस्तक़ाम तरफ़ वधी रहियो आहे। वेझो पर अमुन ॾांहुं वधी रहियो आहे। ईरान कॾहिं बि एटमी हथियार हासिलु न करे सघंदो। अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त अमरीकी फ़ौजी ताक़त सबबु बहिरी ऐं फिज़ाई सहूलतनि खां महरूम थी वियो आहे। तेहरान सां गुज़िरियल हफ़्ते तारीख़ी मुआदो कयो आहे जेको कंहिं बि अमरीकी सदर न कयो हो। हुरमज़ मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न हूंदो। अपने हुरमज़ मां गुज़र ईरानी बहरिया जे तय कयल रस्तनि ताईं थी सघे थो। ईरान जे पासदान इनकलाब चयो आहे त अपने हुरमज़ मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न कंदासीं। अहिड़ो को बि कदम ख़तरनाक साबित थी सघे थो। ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल वाकई चयो आहे त अमरीका तय थियल मफ़ामत ते अमल करे।

करबला जे शहीदन के भेटा पेश करण लाइ सिंध में आज़ादारी जारी। रोड़ीअ मां बरामद थियल नव डरनि वारो ताज़ियो शमा गुलमंडी ख़बर खां मंज़िल तरफ़ रवांदा हुआ। वफ़ाक़ी गुरु वज़ीर मोहसिन नक़वी रोड़ी पहुची जलूस जी सिक्योरिटी जो जाइज़ो वरितो। कराची थठो सचावल बदीन टोनो मोहम्मद खान हैदराबाद मठियारी टणो लयार मीरपुर खास सरपाकर उमरकोट सांगर नवाबचान अछोफो जामशरो दादू खैरपुर सक्कर घोटकी जकमबाद कश्मीर शिकारपुर लाड़काणो कंबर ज़िले जे नंढनि शहरनि में आज़ादारी जारी। हर तरफ़ या हुसैन जूं सदाऊं बुलंद। सिक्योरिटी सख़्त पुलिस सां गॾु।

दोषते हुसैन रोके छो नमाज खे वेठो रहे हुसैन तेसी नसर खणे कोई हाणे नमाज़ मां मर्ज़ीअ सां पाण हेठि नजेसी लॻे हुसैन।

ही हयात या सदके हुसैन जे ही दीहूं ऐं ही रात या सदके हुसैन जे ही गाले हकीकत आ कोई शक न हिन में बाकी ही कायनात या सदके हुसैन जे हर शेखे दिनी।

0: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौके पेश कर वने थो GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवार का दरख्वास्तों तलब कई वन थी GAFM एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में है जो मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे और इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन व्हाट्सएप नंबर 03111770451 ही एक बेहतरीन करियर मौके आहे देर न करियो अभी अप्लाई करियो GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: सख्ती शहादत जी निसोरोई नाज सख्ती शहादत जी निसोरोई नाज रिंद परूड़ी ने रा

ہے ہمارا، لطف لو یہ محل قبض ہے ہمارا۔

0: 5 PM bulletin.
1: या कश्मीर हो, शिकारपुर हो, या इवन खैरपुर का जो कुछ पार्ट है उसमें हमारा फुटफॉल है और पुलिस की एक्सेस है वहाँ पर और इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक्सेस है, लेकिन उस बच्ची का अभी तक पता नहीं चल रहा है। एफर्ट्स तो लेनी पड़ती हैं और गवर्नमेंट का ये काम है कि एफर्ट्स ले, और हम उस फैमिली के साथ और हिंदू कम्युनिटी के साथ बराबर उनके साथ हम शाना बशाना करें, और उम्मीद यही करते हैं गवर्नमेंट कब चाहेगी कि किसी का बच्चा घूमे उसको बाजार।
2: कच्चे में 100 सैकड़ों पर अचण बावजूद प्रिया कुमारी न मिली सघी आहे, कोशिशूं जारी आहिनि। प्रिया जे वारसन ऐं हिंदू बिरादरी सां गॾु कुल्हो कुल्हे में मिलाए बीठल आहियूं। हुकूमत कॾहिं चाहींदी त को ॿारो अगवा थिए ऐं बाज़ियाबु न थिए। सिंध जे गुरु अज़ीज़ जाल अंजार जूं सखर में मीडिया सां ॻाल्हियूं। जाल अंजार चयो त सखर, कश्मीर, घोटकी, शिकारपुर ऐं खैरपुर जे कचे में 100 सैकड़ो पुलिस ऐं इंटेलिजेंस एजेंसीस जी पहच आहे। को बि अहिड़ो एरिया नाहे जिथे पहच न हुजे। कच्चे में हाणे पुलिस जी दहशत आहे। धाड़ेल मुनीर मसराणी बाबति जल्द ख़ुशख़बरी ॾींदासीं।
3: सिंध सरकार खे ॾिसो न, मां छो चवां सिंध सरकार खे, छा सरकार पाण नथी ॾिसे? सरकार खे नाहे ख़बर त हिकिड़ी न्याणी गुम आहे? छा सरकार जी ड्यूटी नाहे उन न्याणीअ खे ॻोल्हनि? उन माउ जी, उन जे पीउ आहे।

रोहिणी में 500 साल कदीमी नव ढालनि वारो ताज़ियो बरामद, लखें अज़ादार शरीक। साहु बुसार थियण सबबि चार फोतनि जी सुञाणप। कंदकोट वासी इमरान शेख, घोटकी वासी नवीद शेख, खैरपुर वासी नेमतला सुमरो ऐं शफ़क़त लाड़िक तौर थी। वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी रोहिणी पहुची मातमी जुलूस जी इंतिज़ामनि जो जाइज़ो वरितो। मोबाइल फोन नेटवर्क मुअतल। कराची में मरकज़ी मातमी जुलूस नुमाइश चौरंगी खां बरामद। जुलूस रवायती रस्तनि खां थींदो, हुसैन या ईरान या इमाम बारगाह ते नहर थींदो। मटियारी, ठटो, राणीपुर, पलीजाणी, काज़ी अहमद ऐं सकरनि में बि तारीख़ी मातमी जुलूस बरामद। टंडो मोहम्मद ख़ान, भंगो बिहण, तंगवाणी, दोदापुर, जाम साहब, गाजी खुआबर, नवाबाद ऐं राजू कानाणी में बि मातमी जुलूस बरामद करे मजलिसूं बर्पा कयूं वियूं। सिक्योरिटी इंतिज़ाम इंतिहाई सख़्तु। मोबाइल फोन नेटवर्क मुअतल। सेवन, शाहपुर, जहानिया, कोटलालू, नसीराबाद ऐं ॿियनि शहरनि में बि मातमी जुलूस कढी मजलिसूं बर्पा। लाहौर ते कराची जहिड़ो बलदियाती निज़ाम लागू न कयो वञे। केरु तफ़सील ॼाण चाहे त हाफिज़ नईम रहमान या ख़ालिद मक़बूल सिद्दीक़ी खां पुछी वठे। नून लीग जे सीनियर अॻवान ख्वाजा साद रफ़ीक़ बिलाल भुटो ज़रदारी जे बयान ते रदेमल। ख्वाजा साद रफ़ीक़ चयो त बिलाल भुटो जो बलदियाती इलेक्शन कराइण जो मुतालबो दुरुस्त आहे, पर कराची जाती इलेक्शन जे न कराई वञे।

वेनेज़ुएला में ज़िलज़िले तबाही मचाए छॾी, इमारतूं मिटीअ जे ढेर में तब्दील, 10,000 खां 1,00,000 माण्हू फोत थियण जो ख़दशो। वेनेज़ुएला जे वक़्ती सदर डेलसी रोड्रिग्स ज़िलज़िले खे क़ौमी सानहो क़रार ॾेई छॾियो। सॼे मुल्क में एमरजेंसी लागू, 164 ॼणा फोत, 700 खां वधीक ज़ख़्मी थियण जी तस्दीक। ज़िलज़िले सबबि क्राक्स जे मर्कज़ी माइकिटिया एयरपोर्ट खे सख़्तु नुक़सानु पहुतो। मीडिया रिपोर्ट्स मूजिबि वेनेज़ुएला में पहिरियों ज़िलज़िलो 7.1 जी शिदत सां हो। कुझु मिंटनि बाद 7.5 जी शिदत जो हिकु ॿियो ज़िलज़िलो आयो, इमारतूं लुड़ी वियूं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में बि ज़िलज़िले जा लोॾा महसूसु कया विया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे वेनेज़ुएला में ज़िलज़िले

सबबि 10,000 माण्हुनि जे फौत थियण जो ख़दशो ज़ाहिरु करे छॾियो। अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त वेनेज़ुएला में ज़िलज़िले बाबति शुरूआती रिपोर्ट सुठी नाहे, वॾे अंग में माण्हू अजल जो शिकार थिया आहिनि। अमरीकी इदारनि खे फौरी तौर मदद करण जी हिदायत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां वेनेज़ुएला में ज़िलज़िले सबबि जानूं ज़ाया थियण ते ॾुख जो इज़हार। आलमी मार्केट में तेल जूं क़ीमतूं ईरान जंग खां अॻु वारी सतह ते अची वियूं। ब्रेंट क्रूड ऑयल जी क़ीमत $72.48 फी बैरल ते पहुची वई। WTI क्रूड ऑयल जी क़ीमत $69.51 फी डॉलर थी वई। मर्बन क्रूड ऑयल जी क़ीमत $6.45 फी बैरल थी वई। शमसुद्दीन सूमरो पुरसरार नमूने गुम थी वई। वारसनि जो चवणु आहे त ॻोल्हा बावजूदि नींगरी जो ॾसु पतो न पइजी सघियो आहे। ॻोल्हा में मदद करण जी अपील।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: GAFM 90.8 सकरण नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौकियों पेश कर वने थो। GAFM 90.8 सकरण नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवारन का दरख्वास्तों तलब कई वने थियो। GAFM एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द जी गोल्हा में आहे जेको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतूं रखे और इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी CV फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौको आहे। देर न करियो, अभी अप्लाई करियो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।
2: सख्ती शहादत जी निसोरोई नाज, सख्ती शहादत जी निसोरोई नाज, रिंद परूड़ी नाज।

सख्ती शहादत जी मिड़ोई मलान खे जरो नाहे यजीद खे ये इश्क जो आजा हुसन जो करार असल इमामन सी।

0: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम आई शानदार करियर मौकियो पेश कयो वने थो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार आई जिम्मेवार उम्मीदवारन का दरख्वास्तों तलब कयूं वने थियो। GAFM एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द जी गोल्हा में आहे जेको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप आई ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतूं रखे आई इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौको आ है। देर न करियो, अभी अप्लाई करियो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।
1: सख्ती शहादत जी निसोरो ई नाज। सख्ती शहादत जी निसोरो ई नाज। रिंद परूड़ी ने राज कजिए करबला।

کو ستایا

आओ सब मिलके करें मातम मौला, आओ आओ एक बहन को दे भाई का पुरस्कार, आओ आओ एक बहन को दे भाई।

अमरीका जो लॉजिकल सर्वे मूजिब वेनेजुएला में जलसले सबब 10,000 का 1,00,000 तीन मौत थी सकन था। अमरीकी सदर पारा इदारन के वेनेजुएला की तकड़ी मदद करने की हिदायत। सदर आसिफ अली सरदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारा वेनेजुएला में जलसले सबब जानी ए माली नुकसान के अफसोस जो इज़हार। सदर आसिफ अली सरदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चाहिए तो पाकिस्तान मुश्किल वक्त में वेनेजुएला की अवाम से हमदर्दी जो इज़हार करे तो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान मुतासिरन से गड है।

सूबाई घर वजीर जियालत सलंजार है प्रिया कुमारी जैं धाड़ियल वट हुजण जो इतला हो वो मार जीव्यो है। कच्चे में ऑपरेशन जारी है पर अया तई प्रिया कुमारी जो पतो पेजी ना सको। कड़ी हुकूमत चाहिंदी ते केन जो बार अगवा होजे ए इहो बाजियाब न थे। रोहड़ी में मीडिया से गालाइंदे जियालत सलंजार चयो ता हाणे कच्चे में डोहारियन जी दहशत न पर पुलिस जी दहशत है। योम आशूर ते समूरी सिंध में सिक्योरिटी जा फुल प्रूफ इंतजाम किया व्या आहिनि।

कर्बला जे शहीदन के भेटा पेश करण लाइ सिंध में आज़ादारी जारी। रोहड़ी मां बरामद थियल नव डालन वारो तारीखी मातमी जुलूस मंडो कबड़ जे पिण तां बरामद थियण बाद मंज़िल तरफ रवां दवां। घरू वज़ीर ज़ाल सलंजार रोहड़ी पहुची जुलूस जी सिक्योरिटी जो जाइज़ो वरितो। कराची में थियल नाए मुहर्रम जो मर्कज़ी मातमी जुलूस मंज़िल तरफ रवां दवां। टटो सजावल बदीन टंडो मोहम्मद खान हैदराबाद भटियारी टंडो लयार मीरपुर खास थरपारकर उमरकोट सांगड़ नवाबशाह नौशेरो फिरोज जामशोरो दादू खैरपुर सक्कर घोटकी जैकबाद कश्मोर शिकारपुर लाड़काणो ऐं कंबर ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में आज़ादारी जारी। हर तरफ़ याव सेन जूं सदाऊं सिक्योरिटी जा सख़्त इंतज़ाम। रोहड़ी में तारीखी शमा गुल मातम दौरान सा बूसाट जन सबब चार आज़ादार फोत थियल आज़ादारनि में ब कंदकोट ऐं ब पीर गोठ वासी शामिल। कंदकोट वासी इमरान शेख नवीद शेख पीर गोठ वासी नमतुल्ला उर्फ काली सुमरो ऐं नूर मोहम्मद लाड़क दम ॾेई छॾियो। इंतज़ामिया मूजिब पीर ऐं गर्मी सबब आज़ादार फोत थिया आहिनि। पाकिस्तान खे अकेलो करण जी कोशिश कंदड़ पाण अकेला थी विया आहिनि। पाकिस्तान दुनिया में अमन ॾींदड़ मुल्क बणिजी वियो आहे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान ज़िमेवार एटमी मुल्क आहे। अमरीका ईरान जंग में अलाह पाकिस्तान खां कम वरितो। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जंग जे ख़ात्मे लाइ ॾींहुं राति कम कयो। हाणे मामला दुरुस्त रुख में वधी रहिया आहिनि। मुल्क बि माशी इस्तक़ाम तरफ़ वधी रहियो आहे। हुर्मुज़ खे कंहिं हिकु मुल्क जी मिल्कियत तौरु क़बूल न कंदासीं। ख़िते में जटादार अमन खे यकीनी बणाईंदासीं। अमरीका परॾेही वज़ीर 30 जून ते टेक्निकल टीमूं ॿीहर ईरान सां एटमी प्रोग्राम ऐं पाबंदियुनि बाबति ॻाल्हियूं कंदियूं। आपना हुर्मुज़ मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न हूंदो। आपना हुर्मुज़ मां गुज़र ईरानी बहिरिया जे तय कयल रस्तनि ताईं थी सघे थो। ईरान जे पास

ने इनकलाब चयो आहे त अपनाए हुरमुस मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न कयो वेंदो। अहिड़ो को बि क़दम ख़तरनाक साबित थी सघे थो। ईरानी पंडित तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त अमरीका ते थियल मफ़ाहमत ते अमल करे

भी करो भी करे मातम हुसैन, भी पढ़ो भी पढ़े मजलिसे हुसैन, हाँ भी बनो भी बने सायरे हुसैन, भी चलो भी चले मतले हुसैन, हाँ भी उठाओ अलम, भी उठाओ अलम, भी बढ़ाओ कदम।

0: वेंजुएलामें ज़लज़ले तबाही मचाए छॾी समय इमारतूं पट पोतियन चौंक वधी 170 थी वियो 10,000 खां वधीक माण्हू मलबे हेठां दॿियल हुअण जो ख़दशो किरियल इमारतुनि जो मलबो हटाइण वारो ऑपरेशन जारी क्रॉकस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बंदि कयो वियो वेंजुएला में हिकु ॿिए पुठियां आयल ज़लज़ले जी ॿिनि झटकनि वॾियुनि इमारतुनि खे मिटीअ जे ढेर में तब्दील करे छॾियो ज़लज़ले जी शिदत 7.2 ऐं 7.5 रिकॉर्ड कई वई वेंजुएला जे वक़्ती सदर मुल्क में एमरजेंसी लागू करे छॾी अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे मूजिबि वेंजुएला में ज़लज़ले सबबि फौतियुनि जो अघु 1,00,000 ताईं वञी सघे थो अमरीकी सदर पारां इदारनि खे वेंजुएला जी तकड़ी मदद करजी हिदायत सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां वेंजुएला में ज़लज़ले सबबि जानी ऐं माली नुक़सान ते अफ़सोस जो इज़हार सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान मुश्किल वक़्त में वेंजुएला जी आवाम सां हमदर्दी जो इज़हार करे थो मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान मुतासिरनि सां गॾु आहे पाकिस्तान खे अकेलो करण जी कोशिश कंदड़ पाण अकेला थी विया आहिनि पाकिस्तान दुनिया में अमन ॾींदड़ मुल्क बणिजी वियो आहे लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान ज़िमेवार एटमी मुल्क आहे अमरीका ईरान जंग में अला पाकिस्तान खां कमु वरितो वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जंग जे ख़ात्मे लाइ ॾींहुं राति कमु कयो हाणे मामलात दुरुस्त रुख में वञी रहिया आहिनि मुल्क बि माशी इस्तेकाम तरफ़ वधी रहियो आहे अबने अरमुस खे कंहिं हिकु मुल्क जी मिल्कियत तौरु क़बूल न कंदासीं ख़िते में जटादार अमन खे यकीनी बणाईंदासीं अमरीकी परॾेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त ख़िते में इतिहादियुनि जी तरक़ी ऐं ख़ुशहाली चाहियूं था टीह जून ते टेक्निकल टीमूं ॿीहर ईरान सां एटमी प्रोग्राम ऐं पाबंदियुनि बाबति ॻाल्हियूं कंदियूं अबने हुर्मुस मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न हूंदो अबने हुर्मुस मां गुज़र ईरानी बैरिया जे तय कयल रस्तनि ताईं थी सघे थो ईरान जी पासदारनि इनकलाब चयो आहे त अबने हुर्मुस मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न कयो वेंदो अहिड़ो को बि क़दम ख़तरनाक साबित थी सघे थो ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकई चयो आहे त अमरीका तय थियल मुफ़ाहम ते अमल करे
1: मेरा

कर्बला जे शहीदन के भेटा पेश कर लाए सिंध में आजादारी जारी टोड़ी में बरामद थियल नव डालन वारो तारीखी मातमी जुलूस मुंडू खबड़ जे पिड़ ता बरामद थियण बाद मंजिल तरफ रवा दवा करू अजीर जालसर जा रोड़ी पहुंची जुलूस की सिक्योरिटी जो जायजो वरतो कराची में थियल नए मोहरम जो मरकजी मातमी जुलूस मंजिल तरफ रवा दवा टट्टो सजावल बदीन टंडो मोहम्मद खान हैदराबाद भटियारी टंडो लयाट मिर्फो खास थरपारकर उमरकोट सांगड़ नवाफिया नुशर अफरोज आमशुरो दादू खैरपुर सक्कर गोटकी जैकबाद कश्मोर शिकारपुर लाड़कानो कंबर जिले के नंडन वडन शहर में आजादारी जारी हर तरफ या हुसैन जो सदाऊं सिक्योरिटी जा सख्त इंतजाम।

0: आँख इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाश जिगर गोशे बतूल।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी 74 अरब 74 करोड़ रुपये के 15 तरक्याती मनसूबन की मंजूरी दे छी। इस्लामाबाद में रिथाबंदी बारे वफाकी वजीर अहसन इकबाल की सदारत हेठ CDWP के इजलास में अहम मनसूबा मंजूर। पधराई मौजिब 431 अरब 2 करोड़ 30 लख रुपये जहा नवा मनसूबा मंजूरी लाए एक्निक के मोकलिया गया। थरपारकर में 11 करोड़ 21 लख रुपये के खर्च से इंटेलिजेंस ब्यूरो के जिले हेडक्वार्टर की अडावत की मंजूरी। 278 अरब 61 करोड़ 85 लख रुपये के खर्च से ML3 रेलवे अपग्रेडेशन मनसूबे की एक्निक के सिफारिश। रोड़ी सिब्बी कोयटा तफ्तान सेक्शन से 996 किलोमीटर रेलवे पटड़ी की अपग्रेडेशन कई वी। 11 नयू रेलवे स्टेशन भी तामिर थन्द।

संग्रार जे मासूम प्रिया कुमारी के जमीन भी वही या आसमान खाई वो पंज साल के संग्रार में योम आशूर से सपील विरहाइंदे घुम थियल मासूम प्रिया कुमारी की बाजियाबी लाए हुकूमत जो एक भी वादो वफा न थो बिन सूबाई हुकूमत दौरान चार आई जी तब्दील थे सभी सखड़ियों दवाओं ए टला असरा ींदा रहा अमरी तौर कुछ भी न थो रोहड़ी में मीडिया से ालाइंदे सूबाई घर वजीर साल हसन अंजार है प्रिया कुमारी जै धाड़ियल वट हुजण जो इतला हो वो मार है कच्चे में ऑपरेशन जारी है पर अं तई प्रिया कुमारी जो पतो पैजी ना है सको कड़ी हुकूमत चाहिंदी त कंजो बार अगवा हुए यो वाजियाब न थे वेंसवेला में जिलसिले तबाही मचाई छी सवे इमारतों पट फोतियन जो अंग वधी 164 थी वो 1000 का वधिक जख्मी 10000 का वधिक मानू मलबे हेठा दबियल होने जो खदशो किरियल इमारतन जो मलबो हटाने वारो ऑपरेशन जारी काकस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बंद कर वेंसवेला में एक बे पुठियां आयल जिलसिले के बिन झटकन वरियन इमारतन के मिट्टी के ढेर में तब्दील कर छो जिलसिले की शिदत 7.5 / 7.5 की रिकॉर्ड कई वही वेंसवेला वक्ती सदर मुल्क में इमरजेंसी लागू करे छी अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे मूजिब वेंसवेला में जल्जले सबब फोतियन जो अंग 1,00,000 ताई वनी सके तो अमरीकी सदर पारा इदारन के वेंसवेला की तकड़ी मदद करने की हिदायत आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा वेंसवेला में जिलसिले सबब जानी माली नुकसान के अफसोस में इजहार सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ है पाकिस्तान मुश्किल वक्त में वेंसवेला की अवाम से हमदर्दी जो इजहार करे तो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान मुतासिरन से गड है पाकिस्तान के अकेलो करण की कोशिश कदड़ पान अकेला थी वह पाकिस्तान दुनिया में अमन ींदड़ मुल्क बणजी वो है लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे नायब वजीर आजम सागर है पाकिस्तान जिम्मेवार एटमी मुल्क है अमेरिका ईरान जंग में अल्लाह पाकिस्तान का कम वरतो वजीर आजम फील्ड मार्शल जंग के खात्मे लाए डी रात कम हाँ मामला दुरुस्त रुख में वही रहा मुल्क भी माशी इस्तेकाम तरफ वही रो है

इसराइली फौजूं लबनान में जंग बंदी जो भजकड़ियों जारी। ॾखण लबनान में गाड़ी ते इसराइली फौज के ड्रोन हमले में बदड़ा मारजी वा। पड़े खबरू इदारे मूजिब गुजल दिए भी लबनान में इसराइली ड्रोन हमले में बदड़ा मारजी वा हुआ। ईरानी पासान इनकलाब कुदस फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी खबरदार कर इसराइली फौज के लबनान के समूर इलाक में निकलो पव। लबनानी सरजमीन इस्तकामत मजामत जो मैदान है। इसराइल पा मुरादो न रखो तो वह जिलत शिकस सबब भजी वेंदो।

थर्मलाइजर शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ सिंध में आज़ादारी जारी। रोहड़ी मां बरामद थियल नव डालनि वारो तारीख़ी मातमी जुलूस मंडू खबड़ जे पेड़ तां बरामद थियण बाद मंज़िल तरफ़ रवाना हुआ। घर वज़ीर ज़ालिसन अंजार रोहड़ी पहुची जुलूस जी सिक्योरिटी जो जाइज़ो वरितो। कराची में निकितल नए मोहरम जो मरकज़ी मातमी जुलूस मंज़िल तरफ़ रवाना हुआ। टटो सजावल पदीन टंडो मोहम्मद खान हैदराबाद मटियारी टंडो लयार मीरपुर खास थरपारकर उमरकोट सांगड़ नवाबशाह नेशर फिरोज जामशोरो दादू खैरपुर सखर घोटकी जैकबाद कश्मोर शिकारपुर लाड़काणो ऐं कंबड़ ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में आज़ादारी जारी। हर तरफ़ या हुसैन जूं सदाऊं सिक्योरिटी जा सख़्तु इंतज़ामात।

नोड़े में तारीख़ी शमा गुल मातम दौरान सा गूसा अचण सबब फोत थियल चइनि अज़ादारनि जी सुञाणप थी वई। फोत थियनि ब कंदकोट ऐं ब पीर गोठ वासी शामिल। कंदकोट वासी इमरान शेख, नवीद शेख, पीर गोठ वासी नेमतला उर्फ काली सुमरो ऐं नूर मोहम्मद दाड़क दम ॾिनो। इंतज़ामिया मौजिब पे ऐं गर्मी सबब अज़ादार फोत थिया आहिनि। टगड़ी में मेघवाड़ बिरादरी जा घर ढहण वाले वाक्य बाद सूबाई वजीर तारिक टालपुर मुतासिरन वट पहुंची खेन सागे घरन में रहण की इजाजत दई छी। सूबाई वजीर तारिक टालपुर टगड़ी में मुतासिर औरतन समेत सूबाई वजीर से मुलाकात कर खेन सागन घर में रहण की इजाजत दिनी। मुतासिरन के संदन घर के थियल नुकसान लाए माली सहायता की भी खातरी। तारिक टालपुर जो चवण हो तो बजट इजलास सबब मसरूफ हो इतने हुआ तो वाक्य पेश न थे। कुछ ढी अग मेघवाड़ बिरादरी का घर खाली कराया गया हुआ।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन फरमायो, कयामत जी दी है उन्हें ये की अमन अमान हासिल होंदो, जो दुनिया में खुदा कांटी देंदो रहंदो।

0: हुसैन गम में तेरे कायनात रोती है, निकल निकल के रोता है दिन, छुप छुप के रात रोती है।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रम अल हराम की खुसूसी नशियात।

0: की खाक एहसान को ना भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशाए बतूल।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ए पुठिया आयल जलजले जे बिन झटकन वडियन इमारतन के मिट्टी जे ढेर में तब्दील कर छड़ियो जलजले जी शिदत 7.5 / 7.5 रिकॉर्ड कई वही वेंजुएला जे वक्ती सदर मुल्क में इमरजेंसी लागू कर छी अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे मूजिब वेंजुएला में जलजले सबब पोतियन जंग 1 लख ताई वही सके तो अमरीकी सदर पारा इदारन के वेंजुएला की तकड़ी मदद करने की हिदायत सदर आसिफ अली सरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा वेंजुएला में सिलसिले सबब जानी ए माली नुकसान के अफसोस जो इजहार सदर आसिफ अली सरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ चाहे तो पाकिस्तान मुश्किल वक्त में वेंजुएला की अवाम से हमदर्दी जो इजहार करे तो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान मुतासर से गड है पाकिस्तान के अकेलो करण की कोशिश कंदड़ पा अकेला थी व्या पाकिस्तान दुनिया में अमन डींदड़ मुल्क बढ़ी वो है लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वजीर आजम इसहाक डार है तो पाकिस्तान जिम्मेवार एटमी मुल्क है अमरीका ईरान जंग में अला पाकिस्तान का कम वरतो वजीर आजम ए फील्ड मार्शल जंग के खात्मे लाए डी रात कम किया हा मामला दुरुस्त रुख में वही रहा मुल्क भी मुआशी इस्तेकाम तरफ वही रो है आपने और मुझके कें एक मुल्क जी मिलके तौर कबूल न कंदासी खिते में जटादार अमन के यकीनी बनाईंदा जी तरक्की खुशहाली चाहूं था 30 जून से टेक्निकल टीमों बीहर ईरान सा एटमी प्रोग्राम

0: इसराइली फौज खे लेबनान जे समूरनि इलाइक़नि मां निकिरणो पवंदो। लेबनानी सरज़मीन इस्तक़ामत ऐं
1: डाकू किसके लिए था कि उसके पास शायद हो, वो भी डाकू मारा गया। गवर्नमेंट कब चाहेगी कि किसी का बच्चा गुम हो और गवर्नमेंट उसको बाजियाब ना करे? बच्ची का अभी तक पता नहीं चल रहा।
2: ना था बुझाने किथे फ्री आ, माना खबर तो सजी अथन फ्री आ किथे आ, माना रिकवर नथी मिले असां खे, पंहिंजी ॼाणी मिले असां खे कहिड़ी ख़बर कंहिं वटि आहे किथे आहे। अञा ताईं असां आफ़िस में वेठा हूंदा, असांजी ॼाणी ईंदी ऐं कॾहिं ईंदी, रियासत जी ज़िमेवारी आहे असांखे ॼाणी रिकवर कराए ॾियनि।
3: अॼु खां 5 साल अॻु असांजी प्रिया संगरार जे मौला अली जे पेड़ में सबील हलाईंदे उतां मिस थी वई आहे।
0: संगरार जी मासूम प्रिया कुमारी खे ज़मीन गिह वई या आसमान खाई वियो? 5 साल अॻु संगरार में योम आशूर ते सबील विराईंदे गुम थियल मासूम प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ हुकूमत जो हिक बि वाइदो वफ़ा न थियो। ॿिनि सूबाई हुकूमतनि दौरान 4 IGs तब्दील थिया। सभई सखड़ियूं दावाऊं ऐं ठल आसरा ॾींदा रहिया, अमली तौर कुझु बि न थियो। रोहड़ी में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सूबाई घर वज़ीर ज़ियाल हसन लंजा चयो आहे त प्रिया कुमारी जंहिं धाड़ियल वटि हुजण जो इतला हो उहो मारिजी वियो आहे। कच्चे में ऑपरेशन जारी आहे पर अञा ताईं प्रिया कुमारी जो पतो पइजी न आहे सघियो। कहिड़ी हुकूमत चाहींदी त कंहिंजो ॿार अगवा हुजे ऐं उहो बाज़ियाब न थिए? संगरार में अगवा थियल प्रिया कुमारी जी बासियाबी लाइ मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाजी मुज़ाहिरा। खैरपुर में हिंदू बिरादरी जो एहतजाज, मीरपुर मातेलो में मासूम प्रिया जी बासियाबी लाइ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। ठल में बि सबील हलाइण दौरान प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ नारा, मज़ाइन पारां प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ तकिड़ा क़दम खणण जो मुतालबो। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी 34 अरब 74 करोड़ रुपयनि जी 15 तरक़ियाती मनसूबनि जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। इस्लामाबाद में थाबंदी वारे वफ़ाक़ी वज़ीर एहसन इक़बाल जी सदारत हेठि CWD जे इजलास में अहम मनसूबा मंज़ूर। पधराई मूजिब 431 अरब 2 करोड़ 20 लख रुपयनि जा 9 मनसूबा मंज़ूरी लाइ एक्निक खे मोकिलिया विया। थरपारकर में 11 करोड़ 21 लख रुपयनि जे ख़र्च सां इंटेलिजेंस ब्यूरो जे ज़िलाई हेडक्वार्टर जी अॾावत जी मंज़ूरी। 278 अरब 61 करोड़ 85 लख रुपयनि जे ख़र्च सां ML3 रेलवे अपग्रेडेशन मनसूबे जी एक्निक खे सिफ़ारिश। रोहड़ी सिबी कोयटा ऐं तफ़्तान सेक्शन ते 996 किलोमीटर रेलवे पटड़ी जी अपग्रेडेशन कई वेंदी। 11 नयूं रेलवे स्टेशन बि तामीर थींदियूं।
4: मेरा आपा भी वही जिसका नाना है नबी बाप वली।

कर्बला जे शहीदन के भेटा पेश करण लाइ सिंध में आज़ादारी जारी। रोहड़ी मां बरामद थियल नव ढालन वारो तारीख़ी मातमी जुलूस मंडू खबर जे पिण तां बरामद थियण बाद रिवायती रस्तनि खां थींदो हैदर शाह हक्कानी जे मुक़ाम ते पहुची वियो। राति जी महिमानी खां पोइ सुबुह जो ॿीहर जुलूस पंहिंजे आख़िरी मंज़िल तरफ़ रवानो थींदो। घरू अज़ीज़ अलसर अंजार रोहड़ी पहुची जुलूस जी सिक्योरिटी जो जाइज़ो वरितो।

पौड़ी में तारीखी शमा गुल मातम दौरान साफ गुस आर्जन सबब पोथियल चैनी अजादारन की सुणप थी वही पोथियन में ब कंदकोट ब पीर गोठवासी शामिल कंदकोट वासी इमरान शेख नवीद शेख पीर गोठवासी नेमतुल्ला उर्फ काली सुमरो नूर मोहम्मद दड़क दम दिनों इंतजामिया मौजे पे गर्मी सबब अजादार पोथिया है।

गढ़ी में मेघवाड़ बिरादरी जा घर ढहण वाले वाक्य बाद सूबाई वजीर तारिक टालपुर मुतासरन वट पहुंची खन सागे घर में रहण की इजाजत दई छी। सूबाई वजीर तारिक टालपुर डगड़ी में मुतासर औरतुन समेत सूबाई वजीर से मुलाकात करे खेन सागियन घर में रहण की इजाजत दिनी। मुतासर के संदन घर के थियल नुकसान लाए माली सहायता की भी खातरी। तारिक टालपुर जो चवण हो तो बजट इजलास सब मसरूफ हो इतने हुआ हा तो वाक्यो पेश न चे हा। कुछ डी अग मेघवाड़ बिरादरी का घर खाली कराया व्या हुआ। चरवार परसा घड़ी चाकर में बोसार बिरादरी की बिन दुरियन में जेड़ो एक जनो कतल। ओठाणे अजमल बोसार मथा पेंजी बिरादरी के हथियार बंदन फायरिंग कई गोलियों लगन सबब जख्मी थियल नौजवान अस्पताल नींदे रस्ते में दम दई छो। पुलिस मौजिब बिन्ही दुरियन में सगावती तकरार हलनड़ है जैं ता वाक्यो पेश आयो है।

0: हुसैन गम में तेरे कायनात रोती है, निकल निकल के रोता है दिन, छुप छुप के रात रोती है।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशियात।

0: आँख इस एहसान को ना भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशाए बतूल।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रम अल हराम की खुसूसी नशियात।

0: हुसैन गम में तेरे कायनात रोती है, निकल निकल के रोता है दिन, छुप छुप के रात रोती है।
1: आप सुन रहे हैं मुहर्रम अल हराम की खुसूसी नशियात।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: लागू करे छी अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे मुजिब वेंसवेला में जलजले सबब पोती जो अंग एक लख का वधी सके तो अमरीकी सदर पारा इदार के वेंसवेला की तकड़ी मदद कर की हिदायत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां वेंसवेला में जलजले सबब जानी माली नुकसान के अफसोस इज़हार सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पाकिस्तान मुश्किल वक्त में वेंसवेला की आवाम से हमदर्दी जो इज़हार करे तो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान मुतासिर से गड है पाकिस्तान के अकेलो करण की कोशिश कदड़ पान अकेला थी व्या है पाकिस्तान दुनिया में अमन डींदड़ मुल्क बणजी व्यो है लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे नायब वज़ीर आज़म साकदार है तो पाकिस्तान जिम्मेवार एटमी मुल्क है अमेरिका ईरान जंग में अला पाकिस्तान का कम वरतो वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल जंग के खात्मे लाए डी रात कम किया हाँ मामला दुरुस्त रुख में वही रहा मुल्क की मुआशी इस्तकाम तरफ वही रहा है